0: हमारे संघर्ष में साथ दिया हमारा और हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस साहब का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम आज न्यायिक प्रक्रिया के एक कदम आगे बढ़े हैं। कल बेल कैंसिल हुई है, एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हुई है, लैंडमार्क डिसीजन है। बेटी का जैसा नाम था त्विशा, तिमिर को भगाने वाली उषा की पहली किरण, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है सारे सिस्टम में, वहाँ वो अंधकार दूर हो करके रहेगा। ये पहला कदम है, लड़ाई बहुत लंबी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें यह सहयोग भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा ताकि हम एक न्याय तक पर पहुँचे। न्याय जो है, ट्रस्ट जो है, आना ही चाहिए, बाहर आना ही चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक हम पूरे संघर्ष में हम ढंग से जो है अपनी बेटी के खोने का दुख भी नहीं मना पाए। अभी हम इस लड़ाई में जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। आप देखेंगे हमारे जीवन में इतना बड़ा जो है वो आ गया है, गैप आ गया है, उसको कोई पूरा नहीं, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। पर यह है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, इसी आशा के साथ हम सब लड़े, शक्ति दे भगवान हमें कि हम आगे बढ़ते रहें।
1: The state has already said that Giribala Singh is not cooperating in the investigation. The CBI is likely to take her into custody for questioning. And if she does not cooperate, if the answers given by her are not satisfactory, she could even be arrested. Because remember, as of late night yesterday, the anticipatory bail that was granted to Giribala Singh by a sessions court in Madhya Pradesh stands cancelled. Non-cooperation and harassment of Tushar Sharma before her death. Serious charges against the mother-in-law. We are going to keep our focus on this story as well, along with what's happening in Karnataka. Don't go anywhere. We're back in a minute.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आतुर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: There is a transition taking place, Mr. Ponnanna, and you know we're hearing that there will be a change of guard by the end of this week. Any light you can throw on that?
3: No, you see, as I said, it's hard for me to say anything. It is the Chief Minister's decision. Siddaramaiah ji is one of the tallest leaders that Karnataka has seen. He has been Chief Minister for 8 years, so it is most. Appropriate and necessary, if you ask me, that these decisions, sensitive decisions, come straight from him rather than we go around.
2: Mr. Ponnanna, you're not just another Congress MLA. You know, you are part of the Siddaramaiah inner circle. You've been an advisor to him. You know, he depends on your advice. You've spent a lot of time with him today, crucially as well. What next for the Chief Minister? What next for Siddaramaiah after this transition? You know, he has a towering legacy. He has a huge base that will be very curious.
4: Well, it's a heavy news day, and news now coming in from Madhya Pradesh, where the High Court late yesterday night delivered the order squashing the anticipatory bail that had earlier been granted to former judge Giribala Singh, who is one of the accused in the death of her daughter-in-law, Twisha Sharma, slamming the Sessions Court that had granted this anticipatory bail. The Madhya Pradesh High Court said that the Sessions Court ignored crucial evidence and allegations in the case. Considering the severity of the allegations, the High Court then quashed the anticipatory bail that had been granted to Giribala Singh. The court also noted that Twisha had leveled allegations of harassment against not just her husband but also her in-laws. The CBI team reached today morning Giribala Singh's house, and now there is speculation that she may be arrested. She will be detained for questioning about the case, and if she doesn't cooperate, an arrest could be imminent. The option of surrendering before the court still remains open for Giribala Singh. By the way, soon after her anticipatory bail was quashed by the Madhya Pradesh High Court, images emerged of Giribala Singh today morning going out of her house and feeding stray dogs, leading to considerable outrage. In fact, the family of Twisha Sharma has demanded that Giribala Singh be arrested ASAP.
5: क्या कहेंगे सर, अब तक जो हुआ है, जो प्रक्रिया हुई है, उस पर क्या कहेंगे?
6: सबसे पहले मेरा सभी मीडिया वाई एनडीटीवी का, पूरी टीम का, एनडीटीवी की, देव मैडम का, तनुश्री मैडम का और अपना हरप्रीत मैडम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पूरी एनडीटीवी टीम के लिए कि जिन्होंने हमारे संघर्ष में साथ दिया हमारा और हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस साहब का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम आज न्यायिक प्रक्रिया के एक कदम आगे बढ़े हैं। कल बेल कैंसिल हुई है, एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई है, लैंडमार्क डिसीजन है। बेटी का जैसा नाम था त्विशा, तिमिर को भगाने वाली उषा की पहली किरण, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है सारे सिस्टम में, वहाँ वो अंधकार दूर हो करके रहेगा। ये पहला कदम है, लड़ाई बहुत लंबी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें यह सहयोग भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा ताकि हम एक न्याय तक पर पहुँचें। न्याय जो है, ट्रस्ट जो है, आना ही चाहिए, बाहर आना ही चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक हम इस पूरे संघर्ष में हम ढंग से जो है अपनी बेटी के खोने का दुख भी नहीं मना पाए। अभी हम इस लड़ाई में जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। आप देखेंगे हमारे जीवन में इतना बड़ा जो है वो आ गया है, गैप आ गया है, उसको कोई पूरा नहीं, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। पर यह है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, इसी आशा के साथ हम सब लड़े, शक्ति दे भगवान हमें कि हम आगे बढ़ते रहें।
5: सर, ये सच बात है कि जो भी पूरी प्रक्रिया हो रही है वो तुषा को न्याय दिलाने के लिए हो रही है। और जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि जो गिरिबाला सिंह थी उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसको कल हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है, जिस चीज़ को लेकर आप लोग सबके सामने आए, जिसके लिए आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुषा को न्याय मिलेगा, ये जो कल कोर्ट का फैसला आया है उससे कितनी उम्मीद सर आप लोगों को जगी है कि तुषार को न्याय मिलेगा?
6: बिल्कुल, बहुत उम्मीद जगी है, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा भरोसा है कि सीबीआई इस ट्रुथ को बाहर निकाल के लाएगी, जो छुपा दिया गया था वो सब बाहर आएगा, और आने वाले समय में हमारा संघर्ष और तेज रहेगा, हम आगे एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे सभी लोगों के सहयोग के साथ में। ये बहुत ही अच्छा जो है निर्णय आया है, और उम्मीद है आगे हम न्याय की तरफ, प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे, और भरोसा जगाए, आज पब्लिक का भरोसा जगेगा कि न्याय से, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये एक चीज़ कायम हो गई है। आज इसने एग्जांपल सेट किया है इस डिसीज़न ने कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, हमें बहुत इस बात का संतोष है।
7: कल विस्तृत सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ बिंदुओं को बड़े ही गंभीरता से लिया है, जैसे कि मृतिका उषा शर्मा के शरीर में 7 एंटीमार्टम इंजरीज पाई गई हैं, ये गंभीर अपराध की ओर संकेत करती है। दूसरा कि गिरिबाला सिंह के द्वारा नोटिसेस प्राप्त होने के बाद भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को वांछित सहयोग नहीं दिया, जो कि शर्त थी उनको अग्रिम जमानत दिए जाने की, उसका भी उल्लंघन होता है। दूसरा, जो भी व्हाट्सएप चैट हैं उनका समग्र अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें एक बात स्पष्ट रूप से निकल करके आती है कि त्विषा शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
8: A four member team of the CBI, including a lady officer, is inside the residence of Gribala Singh, and they are questioning her inside the High Court on Tuesday tore apart the anticipatory bail granted to Gribala Singh in the sensational Tushar Sharma's death case, observing that the trial court had ignored crucial evidence, failed to properly appreciate witness statements, and overlooked serious allegations surrounding the mysterious death of 33-year-old women inside this house in Bhopal. In a scathing 17-page order, Justice Dev Narayan Mishra quashed the anticipatory bail granted by the Bhopal Sessions Court.

0: Ritu right now?
1: Well, very true, Shiv. You see, it's an important location that we're talking about. Of course, Chief Minister Siddaramaiah will be addressing a press conference right from here. I'll request my Vijay Kumar to give you this visual as well. Of course, you're going to see all the media personals in the frame, but that's how the jam-packed right now the conference room really looks like here, whether the Chief Minister Siddaramaiah, as a Chief Minister of the state, would be addressing one first time, you see, for last time, in fact, for now. Yes, this is an important location that we're talking about as well. Now, what we are, in fact, learning as well through my sources is that the governor will be back or likely to be back today in the evening itself. Then it should be seen. You see, crucial developments there further will be expected as well. This is the particular conference room, Shiv. In fact, we have seen Siddaramaiah making very big announcements from here, wherever the the calls that he's really taken in the terms of the governance. So, of course, you say that the era of Siddaramaiah comes to an end, but I see at this point in time, as in the OBC's era is really coming to an end, because the party will now have to look into it that they bring up very good, a big Dalit leader as well, an Ahinda kind of a leader. Will somebody be able to match Siddaramaiah? At this point in time, it of course looks quite difficult and impossible task for the Congress as well, but how they really continue to prepare the grounds for it will be an important thing. Now, every statement, every word that the Siddaramaiah is going to in fact have here will become very important. That's all going to be somewhere pinned and be noted as part of the historical press conference as well, because often that Siddaramaiah will be remembered for the kind of work that he has done for the state. Remember, this also brings me to talk about something that Siddaramaiah took a major decision, was also about the Annabhagya as well. Today, you see, wherever you go in the rural parts, Shiv, you will see how that the Annabhagya scheme has in fact been echoing even till date. That's how the rural population, the poor leader that Siddaramaiah was really considered as well. So yes, today the note that Siddaramaiah will be having here might be somewhere in an emotional tone as well, as that, of course, we have already seen his multiple body expressions as such, but today how his feelings will be really be expressed here during the press conference, that will be important. Back to you, Shiv.
0: Very, very important. And, we were speaking to Minister H.K. Patil a short while ago, and I'll pull that out in a moment, where he confirmed to us that Siddaramaiah was very emotional. There were teary eyes over breakfast, when the communication was first made by the outgoing Chief Minister that he had taken this decision and that he was supporting the High Command's wish that the transition, clear the path for D.K. Shivakumar to take his place as the new Chief Minister of Karnataka. But Vasudha, Ritu is joining us from the press conference venue, I not in my memory has this venue been more politically important. This is where Siddaramaiah literally in public hangs up his boots as Chief Minister, but we all know that politicians have a very long life, and it's only a turning of the page for Siddaramaiah. We don't know what comes next, because he has refused a Rajya Sabha seat that was offered by the High Command. But the void that is left behind by Siddaramaiah as an OBC leader, the Ahinda factor, all of that will very much colour the next few decisions that take place, Vasudha. Whether it is deputy chief ministers, whether it is the composition of the cabinet,
2: that's right,
0: whether it is the ministers who are dropped or retained in the DK cabinet, all of that will be a Siddaramaiah impact.
2: That's right, Shiv. In fact, there's a piece of breaking news. The governor is coming back today, by today evening, by a special flight is what we understand, which means that there could be some changes in the resignation program of Siddaramaiah, the chief minister. What we are told, we're trying to get a confirmation on that. Earlier, the program was that the chief minister reaches the Lok Bhavan by 2 p.m. He tenders his resignation. After that, he addresses a press conference at 3 o'clock, and then he flies off to Delhi at 4:30, lands in Delhi at 6:30, and then, of course, has his series of meetings with Congress leaders on what the next cabinet could look like, what his requests for accommodation are going to be. But now we are told that the governor could be returning to Karnataka today evening by a special flight. Remember, he was on a family emergency to Indore. We'll have to wait and see if there are any changes. This is an evolving story which changes every minute, right? So, and there are so many people involved, veterans involved. There are these twists and turns, but the major detail remains the same. Siddaramaiah has decided to resign. He's already told his cabinet colleagues. It's D.K. Shivakumar who's all set to take over as the Chief Minister of Karnataka. Many would say that this should have happened long back. But remember, for the Congress Party to make this decision even now, it's been quite a challenging task because Siddaramaiah is not just any other Chief Minister. He's a mass leader. He commands a large section of votes from the OBC community. He himself is a strong Kuruba leader, and he's seen as a socialist leader who has a lot of influence on votes, especially from rural and poor parts of Karnataka. So it wasn't an easy decision for the high command, and it is still working out.
0: Absolutely. Okay, it's all a story in motion. 2:30 is when he meets the tenders his resignation at the governor's office. Vasudha reporting that the governor might be headed back to Bengaluru later this evening on a special flight. 3 p.m. press conference by Siddaramaiah. 4:30, he's supposed to leave for Delhi. Will there be any change in that now that the governor is coming back? We don't know just yet. But this is a story in motion. It's a fluid, dynamic situation. Constant updates. I'm handing it back to the studio where Divya takes you through some updates on the Twisha Sharma case, another case that we're keeping our eyes on NDTV. Over to you, Divya.
3: Thank you so much, Shiv. Let's get us the latest update when it comes to the Twisha Sharma case. The CBI visited the residence of the mother-in-law, Giribala Singh, this morning. This comes after the Madhya Pradesh High Court quashed the anticipatory bail granted to the former judge who is accused in the death of her daughter-in-law, Twisha Sharma. The Madhya Pradesh High Court, in its order, said that the Sessions Court ignored crucial evidence and allegations that were being made in the case. Twisha's father, in fact, hailed the cancellation of the anticipatory bail and expressed confidence in the probe that is now being led by the CBI. The CBI may arrest Giribala Singh in the case, and the option of surrendering before the court still remains open for the mother-in-law of Twisha Sharma. Let's just also get Harpreet Kaur, who's joining us live outside the residence of Twisha Sharma, the marital home of Twisha Sharma, where the mother-in-law lives, Giribala Singh. Harpreet, get us all the details that you have for us, because, there have been certain observations that were ignored earlier, which have been highlighted in court while, cancelling that anticipatory bail, quashing that anticipatory bail of the mother-in-law. And, it is all pointing and signalling towards perhaps her arrest.
4: बिल्कुल देखिए कल देर रात ही जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला करीबन 12 बजे के बाद अपलोड हुआ है कि अग्रिम याचिका जो जमानत को लेकर लगाई गई थी वो यहाँ पर जो रद्द कर दी गई है उसके बाद से ही हलचल और तेज हो गई। इस वक्त मैं गिरिबाला के घर के सामने ही मौजूद हूँ। देखिए गाड़ी अंदर खड़ी की गई है सीबीआई की टीम की जो सदस्य हैं उनके तरफ से, क्योंकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला को अरेस्ट करेगी और इसी गाड़ी में लेकर वो भोपाल एम्स पहुंचेगी। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे। अंदर जो है गिरिबाला के लिए अंदर जो गाड़ी है वो खड़ी की गई है, क्योंकि जिस तरह से समर्थ को लाया ले जाया जा रहा था उस वक्त भी काफ़ी जो है मीडिया सवाल करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस बल लगाना पड़ता था। अब से बस कुछ देर पहले ही यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में कटारा हिल्स थाने का जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और अंदर अब जो लास्ट फाइंडिंग्स यानी पूछताछ हैं वो गिरिबाला से की जा रही है। हालांकि समर्थ और गिरिबाला के जो बयान हैं उनमें कहीं कुछ जो है वो गड़बड़ी मिली है कि गिरिबाला कुछ बता रही हैं घटना के वक्त का माजरा और समर्थ ने यहाँ पर कुछ बताया, अब इसी को लेके जो है वो लास्ट यहाँ पर पूछताछ उससे की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ से टीम सबसे पहले सीबीआई की गिरिबाला को लेकर एम्स मेडिकल के लिए जाएगी और उसके बाद सीबीआई कोर्ट में उसे यहाँ पर पेश किया जाएगा। तो फिलहाल मेडिकल के लिए एम्स ले जाने से पहले गिरिबाला ने अंदर सीबीआई को बताया है कि वो सीनियर सिटीजन है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें कई तरह की और तकलीफें हैं शारीरिक, और जिसके चलते उन्होंने सीबीआई को गिरफ्तार करने या उनके जो वकील हैं रिमांड पर ना लेने की यहाँ पर उनसे बात की है। लेकिन फिलहाल वही जो मेडिकल फॉर्म्स हैं वो बताया जा रहा है कि अंदर भरवाए जा रहे हैं, उन पर साइन यहाँ पर गिरिबाला के करवाए जा रहे हैं। पुलिस बल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। गाड़ी अंदर खड़ी की गई है, ये वही गाड़ी है सीबीआई टीम की, जिसमें अब से कुछ देर बाद ही गिरिबाला को ले जाया जाएगा पहले एम्स और उसके बाद इसे सीबीआई कोर्ट में पेश करके अब सीबीआई गिरिबाला को रिमांड पर ले सकती है। जी
3: हरप्रीत कौर, हमें ये पता है कि समर सिंह जो तुषा के हस्बैंड थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाट दी एसआईटी हैड मेंशन. नाउ दैट द सीबीआई हैज टेकन चार्ज ऑफ द केस, यू नो, हमने इतनी एलिगेशन सुनी जो मदर इन लॉ है फ्रॉम मेकिंग एलिगेशन कि वो ड्रग्स ले रही थी, उसको यू नो साइकोलॉजिकल इशूज थे, सो मच एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या भार आया है इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स ऑन हर बॉडी एज फार एज द ऑटोप्सी रिपोर्ट इज कंसर्न?
4: बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि समर्थ एसआईटी को भले ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, बातचीत में सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन ये सीबीआई है, सीबीआई की टीम ने कल उसे अपनी कस्टडी में लिया है और उसके बाद ही पुलिस उसे लेकर यहाँ घर पहुँची थी. 3 घंटे तक उसे यहाँ पर पूछताछ उससे की गई थी. और देखिए, समर्थ की अगर बात की जाए, गिरीवाला की बात की जाए, तो वो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, ट्विशा मानसिक रूप से वो परेशान रहती थी, उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है. लेकिन जो तथ्य वो यहाँ पर बता रहे हैं वो सबूत यहाँ पर पेश नहीं पाए हैं. उन्होंने जरूर वो डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं जिन पर उसका साइकोलॉजिकल इलाज चल रहा था वो जरूर यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, लेकिन ये इलाज क्यों और कब से चल रहा था ये नहीं बता पाए. ये सामने आया है कि शादी के बाद से ये इलाज भोपाल में चल रहा था, यानी उसे शादी के महज 5 महीनों में ही इतना परेशान कर दिया गया कि उसे एक मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ी. यानी कि अब तक जिस चीज़ को ये लोग बता रहे थे कि ट्विशा मानसिक रूप से परेशान थी या मानसिक रूप से उसे कोई परेशानी थी या इस तरीके की तकलीफ थी, वो तकलीफ भी उसे शादी के बाद हुई, तो ये पल्ला भी उनका यहाँ पर भारी पड़ा है कि आखिर ऐसी यहाँ पर क्या यातनाएं मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे दी गई कि उससे एक मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए जाना पड़ा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही फर्स्ट रिपोर्ट में हैंग आया हो कि फांसी के फंदे से उसकी मौत हुई है, लेकिन उसके शरीर पर मल्टीपल इंजुरीज मिली हैं और इस बात का भी परिजनों का दावा है कि समर्थ ने इस घटना से पहले उसके साथ बुरी तरह मारपीट की है. इस संभावना से भी इनकार नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है. ब्लंट फोर्स यानी कि किसी तेज चीज से उसके शरीर पर वार किया गया है और उस चीज के जो वार के निशान है वो उसके शरीर पर है. फिलहाल सेकंड पोस्टमार्टम जो दिल्ली एम्स की टीम ने किया है उस रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. लेकिन कुल मिलाकर अब समझा जा सकता है कि सीबीआई और कानून का शिकंजा गिरीबाला और समर्थ के परिवार पर कसता चला जा रहा है. एक के बाद एक जो उनके झूठ हैं वो सामने आते नजर आ रहे हैं. इस वक्त भी सीबीआई की टीम सुबह 10:20 पर गिरीबाला के घर पहुंची थी और अभी तक यानी कि 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है, टीम अंदर पूछताछ कर रही है. गिरीबाला ने अपनी ख़राब सेहत का हवाला दिया है कि उसे गिरफ्तार ना किया जाए या उससे अभी पूछताछ ना की जाए, लेकिन मेडिकल उनके जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर भरवाए जा रहे हैं. इसके साथ ही समर्थ को कल 3 घंटे तक लेकर यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँची थी. इन 3 घंटों में ना सिर्फ समर्थ से पूछताछ की थी बल्कि टीम के सदस्यों ने घर के हर उस कोने से साक्ष्य जुटाए थे, वो सबूत जुटाए थे जहाँ पर ट्विशा का आना जाना था. इस घर की 3D मैपिंग भी यहां पर की गई है ताकि जो समय बताया जा रहा है 12 मई को ट्विशा की मौत का, कि उसकी मौत इतने बजे हुई थी, 3rd फ्लोर पर जो जिम एरिया है वहां से नीचे लेकर आने तक, एम्स ले जाने तक जो कहानी पूरी गिरीबाला और उसके बेटे समर्थ ने पुलिस को बताई है वो भी अब कहीं उल्टी नजर आ रही है. उसमें भी जो समय की कोई चूक है वो यहां पर नजर आ रही. तो फिलहाल पूरे तरीके से
3: हरप्रीत, वो होल्ड ऑन टू द थॉट, हम आपके पास वापस आएंगे. अनुराग द्वारी आल्सो विद अस, माय कलीग हु इज जॉइनिंग अस. अनुराग, take us to the details as far as the investigation is concerned, you know, pointing to those marks that were on the body of Twisha, also the, you know, bizarre statements that were made by the mother-in-law, particularly the conversation she had with the brother, which the brother recorded, and, you know, absolutely those recordings that have gone viral now as to the kind of weird questions that the mother-in-law was asking her own daughter-in-law.
5: Yeah, and that's what the High Court also took cognizance, and in a 17 pages scathing order, High Court has also, because Harpreet was just mentioning and you asked a question about the postmortem, and I quote from the order, the High Court highlighted that the postmortem report revealed not just death by hanging, but 6 antemortem injuries to Shah's body, including injuries on her arm, finger and head, and specifically noted that these injuries could not have been caused while taking down the body from ligature or transporting her to the hospital. So a very important observation by the High Court, which is also mentioned in the order sheet by Justice Devnarayan Mishra.
3: Right, Anurag, when we talk about the kind of bizarre statements that have come about, those allegations, those claims that were being made by the mother-in-law, particularly when she's having that conversation with the brother of Twisha, take us through that very conversation and the kind of insinuations that were made at the time.
5: Yes, there was an audio of reportedly from that was recorded on April 22nd. That particular audio, there were several allegations, made by her mother-in-law, Giribala Singh, about her character, about, relationship with son, and other allegations which, and that's what the High Court took cognizance of. In fact, the

0: government lawyer, the SG and the Advocate General also pointed out that she held a press conference on 18th of 18th of May, and then she made some allegations on Trisha. So everything is recorded in that order also, all the press conferences, and as well as the media interviews which Garibala has given
1: right.
0: to different channels as well as different publications.
1: Right, absolutely. We also have Harpreet Kaur, still with us, joining us from outside the residence of Trisha, her marital home, where the mother-in-law is being questioned. Harpreet, agar hum kehen ki, the media coverage, jo public opinion hai, they have been the ones responsible to get the case as far as it has. But when we talk about the WhatsApp chats, that is what has really tightened the case and made the case very, very strong. Agar hum kehenge, agar wo WhatsApp chats नहीं होती जो वो यू नो दे आर बीइंग यूज्ड एज एविडेंस इन दिस पर्टिकुलर केस, आप बताइए व्हाट्सएप के जो मैसेजेस जो फैमिली के बीच में फ्रेंड्स के बीच में शेयर हुए थे त्विशा और डिस्क्राइबिंग पर्टिकुलरली हर मदर इन लॉ एंड हर हस्बैंड, उनके बारे में बताइए।
2: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो सबूत था वो त्विशा का और उसके माता पिता के बीच का वो चैट था। शादी 12 दिसंबर 2025 को हुई थी और उसके बाद से ही करीबन एक महीने बाद से ही त्विशा लगातार अपने ससुराल वालों को, जिसमें समर्थ और गिरिबाला को लेकर अपनी मां को शिकायतें कर रही थी। इस बीच लगातार कई बार त्विशा नोएडा अपने घर भी गई थी, लड़ाई हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद समर्थ पहुँचा था या फिर गिरिबाला ने फ़ोन किया था, माफ़ी मांगी थी कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, और उसे लेकर वापस आ गए थे। ये सारी चीज़ें चैट में कही गई थी। देखिए जिस दिन 12 मई को त्विशा की मौत हुई थी, 15 मई को एफआईआर हुई थी, पुलिस ने 3 दिन बाद मामला दर्ज किया था, और मामला दर्ज तब करना पड़ा था जब लगातार जो परिजन है वो थाने में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। उन्होंने वो चैट यहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से ये चैट सामने आया है कि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी, परेशान उसे किया जा रहा था, और यहाँ तक कि उसके कोख में बच्चा किसका है इसे लेकर यहाँ पर सवाल किए जा रहे थे। इस वक्त अनुराग सर मौजूद है मेरे साथ। अनुराग सर, त्विशा का जो चैट था वो चैट भी एक बहुत बड़ा सबूत साबित हुआ है।
3: जी बिल्कुल, न सिर्फ वो जो व्हाट्सएप चैट्स थे बल्कि जो उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था 18 तारीख को, तो बार बार ये बात उठी कि आखिरकार उन्होंने ऐसे कौन से आरोप लगाए, क्यों लगाए। और अब देखिए अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि फिर से हलचल कुछ तेज़ हो रही है, पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है और अंदर अभी भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और गाड़ियाँ लग चुकी हैं। तो ये व्हाट्सएप चैट्स के अलावा जो प्रेस को उन्होंने संबोधित किया, जो आरोप उन्होंने अपने बहू पर लगाए, मृत बहू पर लगाए, इन सारी बातों का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इन सारी बातों के मद्देनज़र जो फैसला जस्टिस देवनारायण मिश्रा का आया है उसमें कई अहम बातें, उसमें एक बात यह भी है कि खुद गिरिबाला सिंह जिनके घर के बाहर हम खड़े हैं वो साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट रही हैं, तो ऐसे में वो सबूत।
1: वेल यू नो अनुराग एंड हरप्रीत, वी विल कीप कमिंग बैक टू यू फॉर मोर ऑन दैट। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ऑन द अदर साइड वी गोना गेट यू आवर कंटीन्यूअस कवरेज फ्रॉम Karnataka, the Game of Thrones in Karnataka, and the new chief minister who's going to be, that announcement that we've really been waiting for. All that and a lot more on the other side. Stay with us.

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।
2: What's the drama?
3: Full of these people.
2: Kolkata trap.
3: The highest number of voters.
2: Tamil Nadu votes decisive.
4: Kapra Tapri ka mahal hai. Udhampur patrao kya gaya ha.
5: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.

0: Welcome back and shifting our focus to other big news. After several hours of questioning, the CBI team has now arrested Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, from her residence with charges of destroying evidence. Ex-judge Giribala Singh was charged with destroying evidence in the case as the CBI team took Giribala Singh for medical examination as well. And earlier in the day, I spoke with Twisha Singh's father, who hailed CBI's arrest of Giribala Singh. Take a listen. We have Twisha's father on the phone line with us. Giribala Singh arrest ho gaye hain. आप क्या कहना चाहते हैं? आपका पहला क्या रिएक्शन होगा?
1: मेरा पहला रिएक्शन है, बहुत बहुत धन्यवाद सीबीआई साहब का. आज उन्होंने ये सेट कर दिया और ये दिखा दिया है न्याय व्यवस्था जो है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. नो बडी इज अबव लॉ. और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और ये बहुत ज्यादा संतोषजनक बात है. वेरी सेटिस्फैक्ट्री.
0: राइट, क्योंकि सीबीआई ने भी कोर्ट को कहा है कि जो गिरीबाला सिंह है, शी ट्राई टू मलाइन द एविडेंस एंड टैम्पर द एविडेंस एंड देयर वाज आल्सो कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ योर डॉटर व्हिच शी डिड आफ्टर हर डेथ. बट आफ्टर दिस बिग न्यूज, सीबीआई ने आपको पहले भी कहा कि देयर विल बी फ्री एंड फेयर प्रोब. अब आप क्या आपको लगता है दैट यू आर क्लोजर टू जस्टिस राइट नाउ?
1: हमें पूरा भरोसा है हमारी सर्वोच्च न्याय सीबीआई के ऊपर, जो हमारा सर्वोच्च संस्थान है और प्रेस्टीजियस संस्थान है. हम इस पर गर्व करते हैं और उन्होंने पहले भी ऐसे काफी केसेस को ब्रेक किया है और मुझे उम्मीद है इस बार भी जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा और लोगों की उम्मीद बढ़ेगी न्याय के प्रति.
0: तो 16 डेज, मई 12th को त्विशा डाइड एंड आफ्टर 16 डेज गिरीबाला सिंह हैज नाउ बीन अरेस्टेड. ऑफ कोर्स पहले लगा कि वो टैम्पर कर सकती हैं एविडेंस, शी कैन यूज हर पावर एज अ फॉर्मर रिटायर्ड जज. बट व्हाट वुड योर मैसेज बी राइट नाउ टू एवरीवन हु स्टूड विथ यू एंड आल्सो टू ऑल द पीपल हु वेंट अगेंस्ट यू?
1: देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि न्याय जो है की प्रक्रिया बहुत कठिन है और आगे लड़ाई लंबी है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि घबराए नहीं और सब मिलजुल करके जब फाइट करते हैं तो दुश्मन कितना भी बड़ा हो उसे जीता जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है. हमने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है आप सभी लोगों के सहयोग से, सभी देशवासियों के सहयोग से, और हमने आज इस मुकाम पर पहुंचे, अचीव किया है हमने. और भरोसा है हमें, अपनी एजेंसीज पे भी भरोसा है, फक्र है हमें, हमारे जुडिशियल सिस्टम पर भी भरोसा है और जरूर न्याय मिलेगा.
0: ऑफ कोर्स

0: votes decisive.
1: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
2: TVK headquarters here.
3: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
4: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
5: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
1: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
6: Happy meeting NDTV team here.
7: Thanks for NDTV.
8: Padmija Joshi.
9: Shriya Shide.
10: This is Shriya Ghosh.
11: Rakhandeep Chaudhary.
12: Manoj Yalowiwal.
13: Deepak Bopanav.
14: This is Vikti.
15: Tanushka Datta.
16: Sam Daniel.
17: Vika Ramaswamy.
18: Ritu Raj Purohit.
19: Shiv Arun.
20: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
21: The situation in the Strait of Hormuz right now and Iran, the last 48 hours have been tense. Is there a sense that strikes are imminent?
22: Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.
21: The import of American oil is important for India, particularly because of the situation.
22: India wants to diversify its energy. We want to diversify the countries we export to.
21: There is also an issue of visas for Indians. They have to come back to India for green cards now. Why has America taken this decision?
22: Well, it's not about India. It's about the whole world. Anytime you reform a system, there's going to be some disruptions. There's going to be some hiccups.
21: How did the meeting with the Prime Minister go? What did you discuss?
22: Relationship between the President, President Trump, and Prime Minister Modi. I think that always makes it easier to have these meetings because of the personal affinity they have to one another.
21: Thank you very much for
22: doing this
21: interview. Thank
22: you.
21: Thank you.
22: Thank you very much.
20: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. Five states, 824 assembly seats. An election that felt more like a war.
23: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
20: We've got some breaking news just coming in. Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchan, what's going on here?
23: Khela ho be.
20: Vijay is finishing off every existing political force. This holds. Pradeep Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
24: Janta ko badhai de raha hoon.
20: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
25: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
26: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers, it's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
27: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
28: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
29: It's also important that how they are reshaping the industries.
20: We've got a fantastic jury. And we've left all decisions to the wisdom of the jury.
25: Who will earn India's top business honors? Find out on 3rd July at the NDTV Profit Business.
30: नमस्कार आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो रोज की जिंदगी का हिस्सा है लेकिन फिर भी अक्सर चुपचाप रह जाता है
31: बिल्कुल आयुष्मान जैसे ग्रीन डॉट हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है वैसे ही आज हम बात करेंगे रेड डॉट की जो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं डिग्निटी का सिंबल है आयुष्मान
30: टुडेस फोकस इज सिंपल फ्रॉम फियर टू अवेयरनेस एंड फ्रॉम अवेयरनेस टू डिग्निटी
31: और इसीलिए आज का फोकस है रेड डॉट डर से डिग्निटी तक
30: मे 28 इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे अ डे टू ब्रेक द साइलेंस एंड टॉक ओपनली अबाउट पीरियड्स
31: क्योंकि जब बात हेल्थ और डिग्निटी की हो तो साइलेंस नहीं सही बात जरूरी होती है आयुष्मान लेट्स लुक एट द डेटा नाउ इंडिया हैज डेफिनेटली मूव्ड फॉरवर्ड एंड द डेटा रिफ्लेक्ट्स दिस NFHS 5 shows over 77% of young women between 15 and 24 now have access to hygienic menstrual protection, a major step ahead, which means accessibility ab is hygiene products ke Ayushman hai. However, the challenge are from over, particularly in rural and underserved regions. That's why UNESCO's findings highlight that the absence of menstrual hygiene facilities continues to affect girls' education and attendance across India and around the world. Ayushman 28th May is Menstrual Hygiene Day. Ye sirf periods ki baat nahi hai, ye baat hai health, dignity aur right information ki. At the right time, wo aur bhi zaruri hai. लेकिन आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और भी आगे ले जाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ पीरियड्स मैनेज करने की नहीं है, बल्कि जो पीरियड्स के बाद जो आयुष्मान जो वेस्ट बचता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट, हम उसकी भी बात करेंगे. और साथ ही एक और बेसिक चीज़ को अक्सर इग्नोर किया जाता है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुएशन के टाइम होता है, हैंड हाइजीन. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्लीन प्रोडक्ट्स मैटर बट क्लीन हैंड्स मैटर एज मच. और इसी कनेक्शन को क्लियरली समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज़ है जो पीरियड्स को टबू नहीं, साइंस, सेंस और कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कस करती हैं. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर तनया नरेंद्रा. उन्हें पॉपुलरली आयुष्मान डॉक्टर क्यूट्रिस कहा जाता है. वो एक डॉक्टर है, इंडियन सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेटर हैं, जो कई सालों से यंग गर्ल्स और वुमेन को सही, ऑनेस्ट और जजमेंट फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे बात पीरियड्स की हो, हाइजीन की, या बॉडी लिटरेसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसकी हो. सो कैन वी प्लीज वेलकम डॉक्टर क्यूट्रिस. इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू हियर.
0: थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड आई एम सो ग्लैड टू बी टॉकिंग अबाउट पीरियड्स.
31: एंड वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर, द राइट वॉइस हियर, आयुष्मान, व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स. आई थिंक लेट्स बिगिन विद टू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ टबू टॉपिक अनफॉर्चुनेटली स्टिल. आई थिंक इफ यू कुड जस्ट टेल अस what really are periods.
0: Okay, so how I always understand it is that this is the reason why I'm called uterus, because uterus bada hi cute organ hota hai. Hame jab bhi uterus ke bare mein bataya jata hai, we are always told ye koi, you know, saaf karne ki jagah hai, isko detox karne ki zarurat hai, but actually uterus is very cute. Ye hamara pehla ghar hota hai and aapka uterus thoda dadi amma type ka hota hai. Aapki uterus ko obsession hota hai to get pregnant. एंड उस प्रेगनेंसी के लिए हर महीने यूट्रस प्रेपरेशन करता है, एक लाइनिंग बनाता है अंदर, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम. जब प्रेगनेंसी नहीं आती है तो बॉडी उसको फेंक देता है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट अ पीरियड इज़. इतना ज़्यादा हवा बना हुआ है इतनी सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस का, एंड वी नीड टू गेट ओवर इट.
7: डॉक्टर क्यूट्रस, प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन hand hygiene and women's health, especially during menstruation.
0: This is such an important question. I'm very glad we're talking about it, because hum period products ki itni baat karte hain, periods ke bare mein itni baat karte hain, aur ek simple conversation bhul jate hain hand hygiene ka. Jo hamara vagina hota hai, that is very susceptible to anything from the outside. Jaise hum aankh kabhi bina haath dhoye nahi chhoote hain, usi tarah hame vagina mein bhi, vulva mein bhi, jo external genitalia hai, usko bhi bina haath dhoye nahi chhuna chahiye, because iske bahut paas mein hota hai hamara urethra, which is your opening, jahan se urine bahar aata hai. एंड वेमेन का जो यूरेथ्रा होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, तो इसका मतलब अगर कोई भी इन्फेक्शन बाहर की तरफ है तो बहुत ही जल्दी वो इन्फेक्शन आपके ब्लैडर में घुस सकता है, जिससे बार बार यूटीआईज होते हैं, हम बहुत कॉमनली सुनते हैं रेकरेंट यूटीआई जिसे बोला जाता है. इसके अलावा बाकी इन्फेक्शंस भी होते हैं, अगेन इट्स द सेम इज टचिंग योर आई. एक म्यूकस मेम्ब्रेन है वजाइना, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शस डिजीजेस को, पैथोजेंस को अब्जॉर्ब कर सकता है, एंड वी ऑब्वियसली डोंट वांट दैट.
31: You know, before we move further, Dr. Kutus, if you can help educate both Ayushman and me about, you know, we have so many products today in the market. Pehle hota tha, accessibility nahi thi. Humne dekha ki ab jo report hai NHFS 5 ki, there is accessibility. Yes, we have a long way to go, lekin products hain. Instead of rural areas mein abhi bhi problem hai, people are still using Ayushman leaves, mud. We still need to work on that. But what is there in the market? If you can just quickly take us through. Also, we see some sustainable products, jaise ye cloth pad hai. कई चीज़ें सस्टेनेबल हैं, तो अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को बता दें little bit about the products and what women have today.
0: It's actually a great time to be alive right now, because like you mentioned, अभी भी लोग पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, but we've had so much growth in the past 10-15 years in the menstrual hygiene space. बहुत तरह के products आ गए हैं. External products हैं, जैसे normal disposable pads जो हम सब ने यूज़ किए होते हैं, this is how we normally start. उसके अलावा आजकल आपके पास biodegradable pads भी आते हैं, तो because लोग menstrual hygiene के waste को लेके परेशान होते हैं, this is a great product, because उसको आप compost कर सकते हैं. This doesn't stick around like plastic does for hundreds of years.
31: Landfill से हम उसको, you know, that waste waste, we're saving it from going to the landfill. So that's the point.
0: Absolutely. So if you want to try more sustainable products, aur bhi cheeze hoti hain, but iske alawa ek period panty bhi hoti hai. This is basically, think of it like a diaper, but it's not as thick as a diaper. It's actually quite nicely shaped. And ye disposable product hai, to jaise agar aap aise area mein hai jahan pe aapke paas pad fekne ki dikkat ho ya aapko bahut heavy flow ho, aap isko backup mein pehen sakte hain. Kafi sare log ise use karte hain. It's very very handy. फिर आते हैं इंटरनल प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स जो हम अंदर भी लगा सकते हैं. जैसे हो गया टैम्पॉन, जिसको हम वजाइना के अंदर डाल देते हैं, वो ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेता है. काफ़ी सारे लोग अगर नोज में ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं
31: एज अ लिटिल हैड. अब्सॉर्ब्स इट रियली वेल.
0: एब्सोल्युटली, इट्स सुपर अब्जॉर्बेंट, इट्स कॉटन, तो वो अच्छे से यहाँ पर ब्लॉक करके सारा एग्जिटिंग ब्लड को अब्जॉर्ब कर सकता है. उसके अलावा वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी हैपनिंग राइट नाउ इज मेंस्ट्रुअल कप्स. सो मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का डिवाइस होता है एंड ये बॉडी के अंदर जाके, वजाइना के अंदर जाके, यूट्रस की ओपनिंग पे ऐसे आके फिट हो जाता है. इट्स वेरी वेरी हैंडी एंड इससे बिकॉज ये बहुत लंबा चल सकता है, करीब 10 साल तक चल सकता है.
31: कैन यू इमेजिन इट, दिस इज सो मच वेस्ट यू आर एक्चुअली. Yeah. You know, I mean, they're saving the amount of waste to go to the landfill.
0: 10 years of menstrual waste आप बचा रहे हैं एक छोटे से silicone cup से. And once you're done using this, आप इसको incinerate कर सकते हैं, आप इसको जला सकते हैं, तो trash नहीं बचता है.
31: आगे जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगी, you know, इस menstrual cup में आपने कहा 10 साल, right? इसके लिए hygiene और भी ज़रूरी हो जाता है, because it's an internal, I mean, you know, you're putting it inside. So इसके hygiene को कैसे maintain किया जा सकता है?
0: बिल्कुल, एंड दैट्स अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट. इस वजह से लोग बहुत डरते भी हैं टैम्पॉन्स और कप्स यूज़ करने में, बिकॉज ये एक इंटरनल प्रोडक्ट है एंड लाइक आई सेड आपकी आँख की तरह है. तो आपको कभी भी कोई भी पीरियड प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ उसके बाद नहीं, उसके यूज़ करने से पहले भी, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग एन इंटरनल प्रोडक्ट, बिकॉज आप एक सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन में जा रहे हैं जो कि सब कुछ अब्जॉर्ब कर सकता है. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हैंड हाइजीन. आप हाथ यूज़ करने से पहले धो रहे हैं, यूज़ करने के बाद धो रहे हैं, एंड विद द मेंस्ट्रुअल कप आपको इसको एक साइकिल खत्म होने के बाद इसको स्टेरिलाइज भी करना होता है विद हॉट बॉइलिंग वाटर.
31: वो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है,
0: बहुत जरूरी है.
7: डॉक्टर, क्यूटरस इज सस्टेनेबल ऑल्सो हाइजीनिक, लाइक वॉट प्रिकॉशन शुड वुमेन टेक वाइल यूजिंग रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स?
31: खासकर अगर मैं, आई थिंक आयुष्मान, आई थिंक इफ आई कैन जस्ट यू नो टेक ऑन टू दैट, ये एक क्लॉथ पैड है तो सस्टेनेबल, यानी कि ये एक क्लॉथ, क्योंकि बार बार यूज़ किया जा सकता है, राइट? यू यूज़ इट, यू वॉश इट अगेन, यू स्टेरलाइज इट. सो दिस इज़ वॉट वी आई थिंक मी सस्टेनेबल, राइट? या
0: एब्सोल्युटली. एंड लोग अक्सर कपड़ा अगर सुनते हैं तो उन्हें लगता है पुराने ज़माने का आइटम है, ये साफ़ नहीं होगा, बिकॉज हमें यही बताया जाता है कि कपड़ा छोड़ो, पैड पे स्विच करो. सो कपड़ा भी बहुत यूज़फुल है, यू कैन ईजिली यूज़ इट. इसके साथ ध्यान कर रखना होता है कि जब आप इसको धो रहे हो तो वॉश विद कोल्ड वाटर, बिकॉज आप हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो जो ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली इस पर चिपक जाते हैं. सो वॉश विद कोल्ड वाटर, डू अ फर्स्ट रिंस, उसके बाद आप इसको अच्छे से धोइए, साबुन से धोइए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसको धूप में सुखाएं, बिकॉज इट्स लाइक योर ओन यूवी स्टेरिलाइजर, वो आपको अच्छे से इसको क्लीन कर देगा, एंड यू कैन यूज़ योर क्लॉथ पैड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम.
7: मतलब कम वेस्ट, बेटर हाइजीन, मोर रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, सस्टेनेबिलिटी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, इज जस्ट अ स्मार्टर एवरी डे हैबिट.
31: That's so well put. In fact, also India हर साल 1,00,000 टन से भी ज़्यादा menstrual waste generate करता है. Most disposable pads are biodegradable, यानी कि जो environment के भी अच्छा और health के भी. So is that true, जो sustainable product, even if it's a biodegradable pad, which you know आज market में आयुष्मान बहुत सारे pads हैं जो biodegradable है, and we hear that while it's good for the environment, ये आपके body के भी it's better. Is that true or is that a myth?
0: So अक्सर जब हम plastic products use करते हैं वो जनरली मॉइस्चर डाउनस्टेयर्स थोड़ा ज़्यादा ही होता है. उसके ऊपर पीरियड का आप मॉइस्चर ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक शीट कवर कर दीजिए जिससे सारा मॉइस्चर अंदर ट्रैप हो जाए. ऑब्वियसली इट्स नॉट ग्रेट. हमारे इंडिया में फंगल इन्फेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, UTIs इतने ज़्यादा होते हैं, हैंड हाइजीन सही से मेनटेन नहीं होती है, उसकी टॉप शीट से इरीटेशन हो सकती है सेंसिटिव स्किन को. सो इट कैन येस क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सम पीपल, विच इज़ वेयर दीज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आर वंडरफुल. दे कैन बी यूज आराम से, आप इनको बिना हेजिटेशन के यूज़ कर सकते हैं, एंड वंस यू आर डन यूजिंग देम ऑब्वियसली डिस्पोजल इज मच ईजियर.
7: एंड डॉक्टर क्यूटरस, हाउ सेफ इज द कप? इज इट रियली लाइक सेफ टू यूज सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स?
0: Yeah, so the silicone that is used in a menstrual cup is actually biocompatible, which means it's meant to be used in a way that is safe for your body. बहुत सारे medical devices भी आते हैं जो इस तरह के silicone के बने होते हैं. So we've tested this well enough. मैं अपना menstrual cup 9 साल से use कर रही हूँ, and So far, so good.
31: Well, Ayushman, Dr. Cutrus, अब हम चलते हैं त्रिची, जहां ग्राउंड पर रियल चेंज देखा जा रहा है. 381 villages and many schools in that area are menstrual waste free. यानी कि सिर्फ ये डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक कलेक्टिव एक्शन की कहानी है. तो आइए चल के देखते हैं कि वहां पे क्या किया जा रहा है कि women are actually using sustainable products. आइए देखते हैं.
8: We are here at Trichy in Tamil Nadu. और आज हम आए हैं मुलुकापट्टी विलेज में, जो कि पुदुकोटई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है.

0: FM formula that's going to be on the menu.
1: First pictures here of the hug between Siddaramaiah and DK Shivakumar. Breaking it as always, first and exclusive here on NDTV. Siddaramaiah has said this to all his cabinet colleagues over breakfast. He said, I have agreed to the High Command's recommendation that DK Shivakumar will be his successor.
2: So he was only willing to shake hands with us. He just looked at us. I asked him a question.
3: Trichy makes one thing very clear. The real change, honestly, really comes through education. Now the Dettol Banega Swasth India curriculum is also being implemented in several schools across Trichy. Let's bring in Ravi Bhatnagar, Communications and Corporate Affairs Director, South Asia, MENARP and Africa. He's from Reckitt into the studio to understand what exactly children are being taught and how this education is driving lasting change. Ravi, welcome.
4: Hi again.
3: Hello. You know, we're having this very, very important critical conversation we have with us, Dr. Cutrus, and she's explained us, I think, everything about menstruation, whether hygiene ki baat ho, hand hygiene kyun important hai, kya products women ke liye available hai.
4: Aur jo Trichy mein hum dekh rahe hain, usme education aur curriculum ka role kitna important raha hai?
5: बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेसिकली जो त्रिची में जो मॉडल है डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया का. स्कूल्स के अंदर कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी आयुष्मान जी, जहाँ बच्चों को हाइजीन पढ़ा रहे थे. वहाँ से त्रिची है तो पीटीएम्स भी होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, और पेरेंट टीचर मीटिंग्स में कुछ वुमेन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो बोलती कि हमें भी ये सब कुछ करना है. आपने हमारे बच्चों को बताया है, अब हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे विलेज के अंदर लैंडफिल्स नहीं हो. तो हमने कहा कि आप क्या सीरियस हैं इस पे? वो बोलती है कि हाँ, हम बहुत सीरियस हैं. बोलती कि तो स्वच्छ भारत का भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रस्पेक्टिव है. तो हमने कहा कि क्या करेंगे, क्या सब पैड्स इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला, नहीं, हमारा एक कलेक्टिव है, हम एक कलेक्टिव की तरह से हम काम करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अभी डॉक्टर क्रिट्रिस ने बताया यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पैड्स का, तो ये बायो जो आपका जो डिस्पोजेबल जो पैड्स हैं, रीयूजेबल जो पैड्स हैं, तो दे हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट. अमेजन पे अगर आप जाते हैं तो उनके 4.5-5 star रेटिंग है उन पैड्स का. वही गांव की महिलाओं ने बनाया, हर बच्ची को वो पैड दिए, हर एक के बैग में है, एक पाउच है बहुत सुंदर सा, उस पाउच के अंदर 5 पैड्स हैं, और उसमें सब कुछ सिखाते हैं कि इसको ड्राई कैसे करना है, इसको वॉश कैसे करना है. सबसे इंटरेस्टिंग था जब मेरे पास में फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिलने आई, प्रीति दामोदरन
3: जी,
5: जिन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव लिया.
3: अभी हमने त्रिची
5: जी, तो जब वो मुझे पहली बार मिलने आई तो कुछ लोग जो है वो मिठाई लेके आते हैं, कुछ लोग बुके लेके आते हैं. फर्स्ट टाइम आई गॉट मेंस्ट्रुअल पैड का पूरा किट इन माई हैंड. आई वॉज वेरी सरप्राइज ऑल्सो एंड वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो कि हाउ भारत इज चेंजिंग. इट वॉज रैप्ड इन द ब्लैक पॉलिथिन्स एंड गिवन लाइक दिस इज समथिंग विच इज अ बिग टैबू, फीलिंग अशेम्ड इन एवरीथिंग. फ्रॉम देयर टू जर्नी लाइक ए यंग इंडिविजुअल हु इज कमिंग सेइंग, so good to meet you Ravi, and you know, handing me over the pad and see, and then telling me like what motivates her to do it, and we continued it.
3: Well done Ravi. Well, I think before I move on, I would want to show you all, you know, when awareness, what Ravi just said about schools, when it enters the classroom, change follows. But let's understand how this curriculum of the Dettol Banega Swasth India is making a real difference on ground. Ravi has spoken about it, so let's go and see schoolon mein kya ho raha hai.
6: Ambika, we are here at the Government Higher Secondary School in Villadipatti in Pudukottai. Our girls ab yahan confidently own kar rahi hain their education. All has been made possible by Gramalya's effort of creating a period-friendly space for these girls, where they provide safe water, privacy and incinerators. Not only this, the 715 students, both boys and girls who study here, they're provided with basic health and hygiene education. यहाँ की girls और teachers ने switch किया है cotton pads पे, जो कि बनाता है इस school को 100% menstrual waste free school. While infrastructure and switching to cotton pads is important, until and unless there is a behavioral change, no change is possible. And that is where Dettol Banega Swasth India comes into picture.
7: நான் வந்து டெட்டால் பனேகா ஸ்விஸ் இந்தியாவில் ஒரு 3 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து நாங்கள் அந்த 5 ஸ்டாண்ட்ஸாக பற்றி நான் சொல்கிறேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 5 ஸ்டாண்டர்டில் தன் சுத்தம், வீட்டில் சுத்தம், நோயின் போது சுத்தம், சுற்றுப்புற சுத்தம், பள்ளியில் சுத்தத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதில் மெயின் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் சுகாதாரம். இந்த மாதவிடாய் சுகாதாரத்தில் இந்த வேளாடிப்பட்டி ஸ்கூலில் வந்து நான் நிறைய டைம் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்லித்தரேன்.
8: நாங்கள் பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து எங்களால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது, நாப்கின் யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்களால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது. ஆனால் வந்து பாதல் மேடம் வந்து துணி அணிய ஆடைக்கும் நாப்கின்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க.
9: கிராமாலயிலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, பீரியட்ஸ் வந்து நமக்கு வெக்கப்படுற விஷயம் கிடையாது, அதை வந்து நம்ம வெளிப்படையாக இருக்கணும். அது வந்து நமக்கு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான். நல்லா பீரியட்ஸ் வரப்போ வந்து நம்ம யாரும் வெக்கப்படக்கூடாது, அது வரலன்னா தான் நம்ம கவலை பண்ணணும்.
10: We have so many activities for involving the children in hygiene education. We have school hygiene clubs with the students. They act as a hygiene ambassadors with the communities and their homes. Through these steps, we have seen a very meaningful change, that is a reduction in the dropout rate and absenteeism rate on the schools, especially among girl children. So when a girl go through her menstruation with dignity, without polluting the environment or without missing her class, we are not just solving a hygiene issue. We are shaping a generation that is more healthier and confident. That is the future we are actually building with the support of Reckitt's Dettol Banega Swasthya India program.
3: You know, we just saw the impact which has been brought on ground. I have a question, Dr. Cutrus. We have two men standing here, of course, working for a cause. They are very integral part of the campaign. We're talking about menstruation. It is a taboo subject. But I think it's very critical here, the role men play when it comes to normalize this conversation. Their fathers, their husbands, sons. How important is it for men, whether it's in our families, to really normalize the conversation?
11: Super, super important. हम जैसे ही इसको women's issue बना देते हैं, this is not a women's issue. This is an everybody issue. उसका जो plastic generate हो रहा है, उससे जो health issues आ रहे हैं, this is impacting the entire country, this is impacting the entire world. It's not just a women's problem. Ladies वाली problem नहीं है ये. And it's super important to make sure this conversation is normalized. अगर हम उसको एक कमरे में बंद कर देंगे, खाली ये लड़कियों की बात है, तो कैसे normalize होगा वो? So I'm very glad we have men here talking about this topic that is usually considered taboo.
3: We have men here. Ayushman, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने एक किरदार निभाया है डॉक्टर जी में, he's played the role of a gynecologist. We have the expert here as well. How was that experience?
4: My entire career is based on bringing on subjects which are uncomfortable,
3: yeah,
4: generally in our society. So taboo breaking is like my second job maybe, if not the first. I also believe that in that particular film, Dr. G, it was a journey from being a regressive person to being the super progressive person.
3: Mm.
4: And that's been the arc in most of my characters of my films. Usme pehla to taboo ye tha ki ek mard gynec nahi ban sakta. Phir dusra taboo ye tha, chote shahron mein aurte mard gynec ke paas jana nahi chahti. Phir uske baad ab main yahan par khada hu, coming from an all boys school and all boys college. Mm. Gender sensitization mere liye bahut late tha. Mm. Aur aaj hum do mard yahan khade hain, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, सो आई थिंक इट्स अ बिग टर्निंग पॉइंट इन आर लाइव्स. इन फैक्ट तो हम चाहते हैं कि बाकी मर्द भी सामने आए, इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा हो, जाने इन चीज़ों के बारे में, इससे अनकंफर्टेबल फील ना करें इन कॉन्वर्जेशन को लेकर.
3: एंड आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट वी टेक अवे फ्रॉम हियर, राइट? बट जस्ट वन लास्ट थिंग वी वांट टू आस्क यू इज व्हाट इज द राइट एज टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर चिल्ड्रन.
11: हम जब मैथ सीखते हैं तो हम डे वन पे बच्चे को एल्जेब्रा नहीं सिखा देते हैं. जब वो छोटे होते हैं हम उनको नंबर्स सिखाते हैं, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं हम उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर वो और बड़े होते हैं हम उनको लॉन्ग डिवीजन सिखाते हैं, फिर जब वो टेंथ में पहुँचते हैं तब उन्हें कैलकुलस समझाते हैं. सो आई थिंक एज अप्रोप्रिएट बॉडी लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक वन सिंगल कॉन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, एंड आई फील लाइक दिस इज़ वेयर वी मेक द मिस्टेक, बिकॉज हम इस तरह के, मतलब एक टुडे वी विल हैव द टॉक, अगर इस तरह के एटीट्यूड से आए, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो जब बच्चे छोटे हों उनको उनकी बॉडी के बारे में बताइए, उनके ऑर्गन्स क्या हैं, उनके क्या नाम होते हैं, थोड़े और बड़े हों तो हम उनको पीरियड्स के बारे में बता सकते हैं. सो एज अप्रोप्रिएट बॉडी लिटरेसी एजुकेशन इज़ अ कॉन्वर्सेशन टू हैव इन योर ओन होम्स.
4: आज रेड डॉट डर का सिंबल नहीं है.
3: बिल्कुल आयुष्मान, रेड डॉट एक रिमाइंडर है हेल्थ का, डिग्निटी का और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस का.
4: जब हर लड़की बिना हेजिटेशन अपनी बॉडी को समझेगी और सस्टेनेबल चॉइसेस करेगी, तभी बनेगा एक हेल्दी, डिग्निफाइड और सस्टेनेबल इंडिया.
3: थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू सो मच डॉक्टर क्यूट्रस फॉर एक्सप्लेनिंग अस एवरीथिंग सो वेल, एंड आई होप दिस करिकुलम यू नो हेल्प्स मेनी मोर गर्ल्स टू नॉर्मलाइज द कॉन्वर्सेशन. एंड थैंक यू आयुष्मान फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस एंड सपोर्टिंग आवर कैंपेन इन द वे यू डू.
12: What seems settled for me is unfinished.